0: मुंग आशिक का है
1: ना है जब साथ में है दिल भर आजा मेरी बाहों में सो जा रख के सर
2: जंगल है आधी रात
3: को आशिक एफएम लाइन दर पर